0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के द रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो, यानी कि वही चैनल जहां हम और आप जुड़ते हैं हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल तक का कनेक्शन होता है। और इसी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाले चैनल पर लेकर आई हूं आपका ही पसंदीदा मॉर्निंग शो नॉन स्टॉप गपशप। और ऐसा है दोस्तों कि स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 10:03:26, और आज किस विषय पे मैं बातें करूंगी वो भी मैं बताऊंगी, और उसके साथ साथ इस नॉन स्टॉप गपशप में कई सारे सेगमेंट्स होते हैं तो उससे भी आप अवगत है ही हैं, लेकिन मैं उसके बारे में भी कई सारी बातें आपसे साझा करना चाहूंगी। और फिलहाल शुरुआत करते हैं

लेकिन उससे पहले इस सफर में आपके साथ है आपकी आजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत, जो ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती है, खैर मकदम करती है, वेलकम करती है।

0: ऐसा है दोस्तों कि हमारे इस कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में एक सेगमेंट होता है और वो सेगमेंट है
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: और इस एक चुटकी नुस्खे में आज मैं जो बोलने वाली हूं वो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन और काला नमक का सेवन पाचन के लिए एक रामबाण घरेलू उपाय है। यह मिश्रण पाचन शक्ति बढ़ाकर गैस, एसिडिटी, पेट फूलना और भारीपन को तुरंत दूर करता है, साथ ही अपच की समस्या में भी राहत देता है। तो ये बात तो याद रहेगी ही कि 107 एफएम रेनबो के कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में सेगमेंट एक चुटकी नुस्खे में आपकी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत ने कहा कि खाने के बाद अगर आप थोड़ी सी अजवाइन और काला नमक का सेवन करते हैं एक साथ मिलाकर तो वो एक रामबाण घरेलू उपाय है।
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 10:10 और फिलहाल सुलक्षणा है आपके साथ लेकर नॉनस्टॉप गपशप ऑन 107 एफएम रेनबो यानी कि दिल से दिल तक वाला रेनबो पर। और ऐसा है दोस्तों कि आज जिस विषय पर मैं सोच रही हूं कि आपसे ढेर सारी बातें करूं और साझा करूं, मतलब ऐसा है ना दोस्तों कि हमारे जिंदगी में ना बहुत सारे खुशियों के लम्हे आते हैं, बहुत सारे गमगीन लम्हे भी आते हैं, लेकिन एक दौर या एक कुछ समय ऐसा भी होता है आम तौर पर लोग अपने जीवन के मतलब अंतिम पड़ाव में ज़्यादातर या फिर मैं कहूँ कि यूं भी जीवन में कई बार कई स्टेजेस पर ऐसी एक फीलिंग उभरती है हमारे मन में कि काश काश हमने ये काम सही समय पर किया होता, काश उस दिन में सुबह जल्दी उठ जाता तो मेरा काम बन गया होता, काश मैं जल्दी स्टेशन पहुंचता तो मेरी ट्रेन नहीं छूटती। ये जो शब्द काश है ना, इस काश शब्द का बहुत बार इंसान मतलब बार बार जो है उसके दिलो दिमाग में ये बात आती है, लेकिन कब, जब वो कुछ खो देता है, जब उससे लगता है कि वो पीछे चला गया, जब कोई कंपटीशन हो या फिर कोई आप एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में समझ लीजिए कि आप लेट से पहुंचे और आप एग्ज़ाम ना दे पाएं, तो ये जो दर्द है ना ये असहाय दर्द है। और कुछ इसी तरह की बातें आपसे साझा करूंगी और विषय यही है काश, काश हमने समय पे ये किया होता, काश उस दिन मैं थोड़ा जल्दी उठ गया रहता, काश उस दिन उस गरीब आदमी की मैंने मदद कर दी होती, काश मेरा भी जीवन थोड़ा बहुत दूसरों की सेवा में गुजरा होता। चलिए बातें तो ढेर सारी हैं, लेकिन फिलहाल आप सभी के लिए ये गीत तेरे जैसा यार कहां फिल्म याराना से।
2: तेरे

ऐसा कई बार होता है दोस्तों कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब हमें रिग्रेट होता है, काश मैंने इस समय पर ऐसा किया होता, काश मैंने उस समय पर ये निर्णय नहीं लिया होता, काश कुछ तो लोग कहेंगे कि चक्कर में नहीं पड़े रहते। तो अगर मैं काश यानी कि पछतावा, यानी कि अंग्रेज़ी में कहें तो रिग्रेट, अगर पहले रिग्रेट की बात करूं तो ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने खुद के सपनों को जीने का साहस किया होता तो सबसे बड़ा ये अफसोस नहीं होता कि मैं दूसरों के कारण जो है अपने सपनों को नहीं जी पाया, कभी दूसरे के इच्छाओं के बगैर, मतलब उनके इच्छाओं को पूरा करते करते कहीं ना कहीं हम अपने सपनों को भीतर ही भीतर निस्तेनाबूद कर दिए। कई बार ऐसा होता है ना कि समाज परिवार की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीता है इंसान और फिर अंत में उसे पछतावा होता है कि काश, और वो काश काश बन के ही रह जाता है। तो ऐसा ना हो। और फिलहाल सुनते हैं एक बहुत ही अच्छा मस्ती वाला गाना, यो यो हनी सिंह और नेहा कक्कड़ की आवाज़ में, सनी सनी।

आमतौर पर लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव या बाद के समय में जो है जिन प्रमुख बातों पर ज्यादातर अफसोस रिग्रेट करते हैं उनकी सूची ब्रॉनी वेयर और विभिन्न अध्ययनों में फोर्ब्स की अनुसार दी गई एक सूची है। और उस सूची के अनुसार पहला जो है रिग्रेट वो ज़्यादातर इस बात पे होता है कि समाज परिवार की अपेक्षाओं के अनुसार आदमी जीवन जीता है और फिर कुछ ऐसे काम होते हैं जो वो नहीं कर पाता है या फिर कुछ ऐसे काम होते हैं जो ज़बरदस्ती

और इस सूची में अगला वो कौन सा मुद्दा है जिसपे ज्यादातर लोग रिग्रेट करते हैं, वो भी मैं साझा करूंगी। लेकिन फिलहाल क्यों ना सुन लिया जाए उस गीत को। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा गीत है। ए हरिहरन और कृष्णमूर्ति की कविता, कृष्णमूर्ति की आवाज में, क्या कहना फिल्म का टाइटल ट्रैक।

0: म्यूजिकली योर्स पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप विद योर आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत, और आज का हमारा विषय है, अगर एक शब्द में कहूं तो काश हिंदी में, अंग्रेजी में कहूं तो रिग्रेट, और अगर काश समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो ये तो कह ही सकते हैं अफसोस। बहुत सारे ऐसे लम्हे आते हैं हमारे जीवन में जबकि हमें अफसोस होता है, काश इस काम को हमने इस तरीके से किया होता, काश उस दिन हम सुबह उठ गए रहते तो मेरी ट्रेन नहीं छूटी होती, मैं स्टेशन लेट से नहीं पहुंची होती, तो काश अगर मैं समय रहते बातों को समझ गई रहती तो शायद कोई गलत फैसला नहीं लिया होता। मतलब बहुत ऐसे लम्हे आते हैं जब हमें हम रूबरू होते हैं इस शब्द से रिग्रेट, और ये रूबरू हम तब होते हैं जब ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटता है जो हमें अपने मन के हिसाब से हम करना चाहते थे नहीं कर पाए, या फिर किसी के कहने पे भी अगर हम वो काम कर लेते तो शायद हमारा भला होता लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाए। तो इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़े हैं राजस्थान जोधपुर से राकेश गिरी गोस्वामी जी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर, ऐसा है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है और कार्यक्रम है नॉन स्टॉप गपशप, और आज हमारा विषय ही है कि ये जो शब्द है रिग्रेट, ये शब्द को हम क्या करें, कैसे करें कि हमारे लाइफ में ये शब्द हमेशा के लिए डिलीट हो जाए।
1: ये सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में कई मौके आते हैं जब हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि काश हम ये कर लेते तो ये काम नहीं होता। सबसे पहली बात यह है कि जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पाते हैं, कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो हमें लगता है कि यार हमने छुट्टियों में जो है अपना टाइम बिगाड़ा, गर्मी की छुट्टियों में हम कोई क्रिएटिव वर्क कर लेते, पढ़ाई के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेते तो वो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, तो कई बार पढ़ाई को लेकर भी हमारे मन में रिग्रेट होता है। इसी तरह कैरियर में भी हमारे कई तरह के रिग्रेट होते हैं कि जैसे हमको दो तरह की नौकरी ऑफर हुई है तो हम एक ही नौकरी सेलेक्ट करते हैं तो बाद में हमें लगता है अरे यार ये तो नौकरी सही नहीं है, इसमें तो परेशानियां ज्यादा है, हम वो पहले वाली ले लेते तो ठीक रहता। कई बार रिश्तों में भी रिग्रेट होता है कि हम उग्र हो जाते हैं, जोश जोश में हम छोटी सी बात के पीछे रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, फिर दो तीन साल बाद हमें लगता है कि यार उस दिन अगर हम थोड़ा चुप रहते शांत रह जाते तो हमें इतना अफसोस नहीं होता, हमें इतना दुख नहीं होता। तो इस तरह कई चीजें कई घटनाएं होती है नौकरी के अंदर।
0: अच्छा सर, ये बताइए कि आपको कभी रिग्रेट हुआ है कि अपने आपकी लाइफ में?
1: हाँ, मुझे बहुत रिग्रेट हुआ है क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस ऑफिसर थे तो वैसे तो वो कैरियर में जिसने जो कैरियर चुना उसमें वो सब बच्चों को सपोर्ट करते थे, लेकिन एक बार उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि परिवार से कोई बच्चा जो है सिविल सर्विस में जाए या पुलिस सर्विस में जाए, तो उसमें मैंने दो बार ट्राई किया सिविल सर्विस के लिए, रिटर्न एग्जाम भी पास किया लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसका मुझे हमेशा रिग्रेट रहता है कि मैं उनकी कही हुई बात का पालन नहीं कर पाया या उनकी इच्छाओं को मैं पूरा नहीं कर पाया, ये मुझे अक्सर रिग्रेट रहता
0: नहीं है। तो ये तो पितृ भक्ति वाली बात है और ये होना भी चाहिए।
1: नहीं, पितृ भक्ति वाली बात नहीं, मतलब लगता है कि नहीं चलो उनकी इच्छा, उन्होंने भी मेहनत करके कैरियर बनाया, एक समाज में अपनी मजबूत स्थिति बनाई, तो उन्होंने कहा तो हमें उसका पालन करना चाहिए था, शायद हमारे प्रयास में हमारी मेहनत में कहीं कोई चूक रह गई होगी तो उसका जरूर रिग्रेट रहता है कि यार थोड़ा और मेहनत कर लेते, थोड़ा और ट्राई कर लेते तो हो जाता, ठीक हो जाता।
0: अच्छा, आपको लगता है कि ज्यादातर लोगों को अफसोस इस बात पे होता है कि वो ज्यादातर समय जो है वो आलस की वजह से उन्हें, मतलब उनके हाथ से मौके निकल जाते हैं, और
1: वो इसलिए कि टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली करते नहीं है, तो दूसरा क्या समय का प्रबंधन जो है सही नहीं होता, और वो जिस वक्त जो काम करना होता है उस वक्त वो करते नहीं है और वो आलस की वजह से उस काम में डिले करते जाते हैं जबकि उनके पास और कोई काम नहीं होता है, तो वो ऐसे में वो अपना मुख्य काम छोड़ के आलतू फालतू टाइम में घूमना फिरना, दोस्तों के साथ घूमना, बाजार में घूमना, तो इस तरह के कामों में वो अपना समय व्यर्थ करते हैं, इससे भी फिर उनको नुकसान होता है, बाद में वो दूसरों को दोष देते हैं यार हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया।
0: अच्छा, तो हम ऐसा क्या कह सकते हैं कि अगर हम डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जिए और अगर पेशेंस हो और टाइम मैनेजमेंट, इन तीनों चीजों को अगर हम अपने लाइफ में बैठा ले, मतलब एक मूल मंत्र बना ले और उस हिसाब से काम करें तो शायद रिग्रेट का मौका नहीं मिलना।
1: थोड़ा सा ये है कि कोई भी काम करना है तो हमें छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हमें मेंटली भी थोड़ा सा टफ होना चाहिए, मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए।
0: हाँ, तो फिर ये भी कह सकते हैं ना कि मानसिक रूप से अगर मजबूत होना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज।
1: जी हाँ,
0: और कुछ व्यायाम करें।
1: हाँ, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है
0: लाइफ। जी सर, तो चलिए इसी बात पे हम आपको सुनवाते हैं ऋचा चड्ढा की आवाज में फिल्म घनचक्कर से लेजी लैड वाला गाना, और बहुत बहुत शुक्रिया सर।

चलिए काश वाली सूची में से एक जनरलाइज जो सूची होती है उसमें से एक और आपको बात आपसे साझा करना चाहूंगी। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे बातों पर जो है रिग्रेट करते हैं कि मैंने खुद को खुश रहने की अनुमति दी होती, ये अफसोस अंत में होता है कि खुशी एक विकल्प है, चॉइस थी, लेकिन वे पुरानी आदतों और डर में फंसे रहे और इसलिए अपनी खुशी पर ध्यान नहीं दे सके। तो चलिए हेलीकॉप्टर ईला फिल्म से पौलोमी घोष की आवाज में स्वानंद किरकिरे की कलमबद्ध किए हुए गीत को, जिसे संगीत से सवारा अमित त्रिवेदी ने, आप तक पहुंचाती हूं 107 FM रेनबो के कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप के जरिए।

जी हाँ दोस्तों, आज नॉनस्टॉप गपशप में हम बातें कर रहे हैं कि वो कौन कौन से अहम मुद्दे होते हैं जिस पर ज्यादातर लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी रिग्रेट करते हैं। तो उसमें से एक होता है कि रिश्तों को समय ना देना, रिश्तेदार, साथी और बच्चे परिवार को प्राथमिकता ना देने और दोस्तों के साथ वक्त ना बिताने का बहुत गहरा पछतावा होता है ज्यादातर लोगों को। तो इसी बात पर आपको मैं सुनवाती हूँ आ गले लग जा फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में साहिर लुधियानवी की लिखी हुई कलमबद्ध की हुई गीत को, जिसे आप सुनेंगे आर डी बर्मन के मतलब संगीतबद्ध उन्होंने किया है, म्यूजिक है उसमें। और क्या

0: स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 10:47 यानी कि 13 मिनट शेष बचा है इस कार्यक्रम में नॉन स्टॉप गपशप में, जिसे आप सुन रहे 107 एफएम रेनबो पर दिल से दिल तक वाले चैनल पर। और आज जो हमारा विषय है नॉन स्टॉप गपशप में वो ये है अफसोस, रिग्रेट। तो ज्यादातर समय हम किन किन बातों पे रिग्रेट करते हैं, उसी से जुड़ी हुई बातों को लेकर आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जुड़े हैं बनारस से, यूपी बनारस से शिवाकांत। तो मैं जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो शिवाकांत आपका स्वागत करती हूँ मैं 107 पर, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हेलो, मैं आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। और ये बताइए कि आप करते क्या हैं?
1: मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ।
0: बिजनेस करते हैं, अच्छा। बिजनेस मतलब आपके करियर का पहला मतलब, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बहुत सारे काम, एक काम करते हैं फिर छोड़ के दूसरा काम करते हैं, तो ऐसी भी कोई बात रही है आपके साथ?
1: जी नहीं।
0: अच्छा ये बताइए कि आप

0: आपको अपने जीवन में कभी भी अफसोस हुआ किसी बात को लेकर?
1: जी,
0: किस बात को लेकर अफसोस हुआ?
1: एक बार मैं लखनऊ से आ रहा था ट्रेन में, तो एक बेगर आया और पैसा मांगने लगा, बोला बहुत भूखा था। भाई जैसे ही पैसा निकाला ट्रेन खुल गई और बहुत अफसोस हुआ कि उसको मैं दे नहीं पाया कुछ।
0: तो ये तो मतलब वाकई में मैं समझ सकती हूँ इस बात का कितना दर्द हुआ होगा, क्योंकि मतलब ज़्यादातर समय हम अगर सोचते भी हैं कि चलो खुद से मदद ना करें, मतलब समय नहीं निकालते मदद करने के लिए, लेकिन सामने से अगर कभी ऐसा मौका आता है कि हम मदद कर पाएं, कर सकें और करने की इच्छा भी हो और नहीं कर पाते हैं तो अफसोस होता है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़े यूपी बनारस से, और यूं ही समय मिले तो कार्यक्रम में ज़रूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू।

ऐसा बहुत बार होता है कि जोखिम रिस्क ना लेने का जो डर जीवन में सुरक्षित खेलने का सेफ गेम सेफ प्ले करने के कारण वे लोग

अवसरों को खो देते हैं जो उन्हें कुछ बड़ा हासिल करा सकते थे। ये भी एक रिग्रेट का कारण होता है बहुत लोगों के जीवन में। स्वास्थ्य की अनदेखी करना, समय रहते अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान ना रखने के कारण बुढ़ापे में बीमारियों का सामना करना, ये भी एक बहुत बड़ा रिग्रेट होता है ज़्यादातर लोगों को बुढ़ापे में कि काश जवानी में, काश बचपन में हमने अपने सेहत पर भी ध्यान दिया होता। स्वार्थ के कारण दूसरों की मदद ना करना, जब इंसान को लगता है कि उसने दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुछ नहीं किया तो उसे इस बात का भी बहुत रिग्रेट होता है। और चलते चलते यही कहूंगी आप सभी से कि ये जीवन में अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, और ऐसे में हर एक पल को हम जीवंत और खुशी खुशी जिए। और अगर उस उन लम्हों में ज़रूरत हो कि मतलब हमारे सामने वाले को हमारी ज़रूरत हो और अगर हम मदद करने के काबिल हों उस वक्त, तो ज़रूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये जो लम्हे होते हैं जब हम मदद करते हैं तो हम इंसान से कहीं ना कहीं फरिश्ते बन जाते हैं। और अगर जीते जी आपको फरिश्ते बनने का मौका मिले तो भला इससे पीछे मत हटिएगा। आज इंटरनेशनल नर्सेस डे है और ऐसे में हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उनके जन्मदिन पर याद करते हैं और उनसे एक सीख मिलती है कि जीवन में जो सेवा है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर गौर फरमाना चाहिए। लेकिन अब समय उछला है कि थोड़ी देर में मैं कार्यक्रम को विराम दूं आज के लिए, नॉनस्टॉप गपशप प्रोग्राम को। और ऐसा है कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं 11:10 पर 100.1 FM गोल्ड खरा सोना वाले चैनल पर। लेकर आऊंगी कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और फिलहाल चलते चलते यही कहूंगी कि दोस्ती की डोर जो है ना उसे बड़े मजबूती से बांधे रखिए, क्यों कि ये दोस्त होते हैं ना ये हमें बहुत बार ऐसे मौके से बचा लेते हैं जबकि हमें कोई रिग्रेट ना हो। तो राय मशवरे उनसे लेते रहिएगा, क्योंकि दोस्ती के जो रिश्ते होते हैं वो खून से भी कहीं ना कहीं आगे बढ़कर होते हैं, क्योंकि दोस्त वो होता है जो आपकी आंखें नम हो और कारण वो समझ जाए। और इन्हीं में से एक सच्चा दोस्त है 107 FM रेनबो, क्योंकि ये रहता है आपके साथ ऑल डे ऑल नाइट और है म्यूजिकली योर्स, तो संगीत वाला साथी जो है आपके स्ट्रेस को दूर करता है। इसी बात पर चलते चलते यही कहूंगी कि आपका दिन मंगलमय हो और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। किशोर कुमार मन्ना डे की आवाज में इस गीत को सुनते सुनते सुलक्षणा पर्वत को आज्ञा दीजिए आज के लिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ ठीक 3:02 पर लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का। आप सुन रहे हैं तीन का तड़का बरो 7 FM रेनबो पर। तीन का तड़का बरो 7 FM रेनबो पर।
0: जी हाँ, 3 का तड़का है प्रोग्राम का नाम, जहाँ होती है बॉलीवुड हॉलीवुड की ढेर सारी बातें, साथ ही साथ लेटेस्ट रिलीजेस, थोड़ी सी रिव्यू और तड़ाकेदार एकदम मसालेदार खबरें। पर इसी मसालेदार खबरों के सिलसिले को हम शुरुआत तो करेंगे, पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा पहला गाना।

चलिए दिन के तड़के की शुरुआत करते हैं हमारे पहले तड़के से। तो दोस्तों, बॉलीवुड में अब ऐसा धमाका होने जा रहा है जिसे सुनकर माइथोलॉजी लवर्स भी एक्साइटेड हैं और रणवीर सिंह के फैंस भी। जी हाँ, ऊर्जा अंदाज अपने हटके किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले रणवीर सिंह अब भगवान शिव के रूप में बड़े पर्दे पर नजर आ सकते हैं। खबर है कि रणवीर सिंह ने लेखक अमीश त्रिपाठी की सुपरहिट किताब द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा के फिल्म अधिकार हासिल कर लिए हैं, यानी अब इस बेहद लोकप्रिय कहानी को फिल्मी दुनिया में उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब जरा सोचिए, रणवीर सिंह का इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस, ऊपर से भगवान शिव जैसा पावरफुल कैरेक्टर, अमीश त्रिपाठी की ग्रैंड माइथोलॉजी। अगर ये प्रोजेक्ट सही तरीके से बना तो बॉलीवुड को एक और मेगा माइथोलॉजिकल फ्रेंचाइज मिल सकती है। किताब पढ़ चुके फैंस जानते हैं कि इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा के में शिव को किसी देवता की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह दिखाया गया है जो हालात से लड़ते लड़ते महादेव बन जाता है। यही बात इस कहानी को अलग और बेहद सिनेमैटिक बनाती है। फिलहाल फिल्म की ऑफिशियल कास्टिंग और रिलीज डेट सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी चर्चा काफी शुरू हो चुकी है कि क्या रणवीर इस किरदार में फिट बैठेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी एनर्जी बिल्कुल परफेक्ट है इस कैरेक्टर के लिए, तो कुछ फैंस को अब भी इंतजार है कि फर्स्ट लुक कैसा होगा। लेकिन एक बात तय है, अगर ये फिल्म बनती है तो स्केल भी बड़ा होगा, विजुअल्स भी ग्रैंड होंगे और एक्सपेक्टेशंस वो तो आसमान छूने वाले हैं फिलहाल। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा नीचे रखते हैं, थोड़ा सा कम रखते हैं और सुनते हैं हमारा अगला गाना।

तो अब सीधे चलते हैं हमारे अगले गेमिंग की दुनिया से बड़े धमाके वाली खबर की ओर। यहाँ दोस्तों फिनिश हिम वाला आइकॉनिक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा और अब वही फ्रेंचाइज फिर से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। जी हाँ, मॉर्टल कॉम्बैट 2 ने रिलीज होते ही शानदार कमाई कर डाली है और फ्रेंचाइज के इतिहास का सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड दर्ज भी किया गया। हालांकि शुरुआती अनुमान कुछ और बड़े थे, लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 60 मिलियन डॉलर्स का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी ऑडियंस का प्यार भरपूर मिल रहा है। फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में करीब 38.5 मिलियन डॉलर्स की कमाई की, जबकि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 21.5 मिलियन डॉलर्स अपने नाम की है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है, इसने ओपनिंग वीकेंड में ही फ्रेंचाइज की पुरानी फिल्म मॉर्टल कॉम्बैट एनिहिलेशन की पूरी लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कमाई को पीछे छोड़ दिया है। अब यह सीरीज की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन चुकी है और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जल्द ही ओरिजिनल मॉर्टल कॉम्बैट को भी ये पीछे छोड़ सकती है। हालांकि बॉक्स ऑफिस की रेस आसान नहीं थी क्योंकि सामने थी द डेविल वेयर्स प्राडा 2 और माइकल जैसी बड़ी रिलीज, और फिर भी इस आर रेटेड एक्शन फैंटेसी ने अपना दम दिखा दिया। इस बार कहानी घूमती है जॉनी केज के इर्द गिर्द और इस किरदार में नजर आ रहे हैं कार्ल अर्बन। फैंस खास तौर पर उनकी कास्टिंग को लेकर काफी एक्साइटेड है। फिल्म में थंडर गॉड रेडन, सोनिया ब्लेड, किताना और खतरनाक शाओकान जैसे कैरेक्टर्स भी दिखाई देंगे, यानी एक्शन फैंटेसी और ब्रूटल कॉम्बैट का पूरा पैकेज तैयार है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में मॉर्टल कॉम्बैट 2 बॉक्स ऑफिस पर और कितने रिकॉर्ड तोड़ती है, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि गेमिंग की दुनिया की डेडली टूर्नामेंट अब सिनेमाघरों में भी जीतता नजर आ रहा है। जानेंगे क्या होगा आगे, पर फिलहाल सुनेंगे हमारा अगला गाना।

इस गाने की आखिरी जो लाइन है वो बिल्कुल सही बैठती है, या कहें कि फर्स्ट लाइन की, जिस जगह से हमारी सबकी, जिस जगह जाके हमारी बात होती है उस जगह से हमारी शुरुआत होती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है फिल्म राजा शिवाजी के साथ। जी हाँ, लोग धुरंधर 2 और माइकल के नशे से बाहर निकल नहीं पाए कि राजा शिवाजी ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन किया। रितेश देशमुख की इस ऐतिहासिक फिल्म ने 11 दिनों में इंडिया में 70.65 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है, जबकि वर्ल्ड वाइड कमाई 83.80 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। फिल्म ने दूसरे रविवार को जबरदस्त उछाल लाते हुए 6.680 करोड़ रुपए कमाए, हालांकि 11वें दिन कलेक्शन घटकर 2.40 करोड़ रुपए आ रहा है। सबसे खास बात क्या है पता है कि राजा शिवाजी अब मराठी सिनेमा की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन चुकी है। अब इसके आगे सिर्फ बाईपन भारी देवा और साइरा है। फिल्म में जेनेलिया देशमुख, विद्या बालन, संजय दत्त और अभिषेक बच्चन भी हैं, अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी दर्शकों के दिलों में गहरी जगह बना रही है और फिल्म तेजी से 100 करोड़ क्लब की ओर बढ़ भी रही है। फिलहाल ये था शिवाजी महाराज का जो कलेक्शन, वीकली कलेक्शन के बारे में हमने बात कर लिया। फिलहाल चलते हैं आगे और सुन लेते हैं जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा ये गाना।

दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक कैन्स फिल्म फेस्टिवल एक बार फिर सजने जा रहा है। जी हाँ, 79th कैन्स फिल्म फेस्टिवल 12 से 23 मई यानी 23 मई 2026 तक फ्रांस के खूबसूरत शहर कैन्स में आयोजित होगा। इस बार फेस्टिवल की जूरी की कमान संभालेंगे मशहूर दक्षिण कोरियाई फिल्म मेकर पार्क चान वूक, जिनकी फिल्मों को पहले भी कैन्स में खूब सराहा जा चुका है। भारत की तरफ से भी इस बार ग्लैमर और स्टाइल का तड़का लगने वाला है। ऐश्वर्या राय बच्चन और आलिया भट्ट एक बार फिर रेड कार्पेट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। इसके अलावा करण जौहर, तारा सुतारिया, मौनी रॉय और पूजा बत्रा भी इस ग्लोबल इवेंट में नजर आ सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार भारतीय फिल्मों के प्रीमियर की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल मंच पर नई पहचान मिल सकती है। और अगर आप घर बैठे इस ग्रैंड इवेंट का मजा लेना चाहते हैं तो कैन्स की ऑफिशियल जो वेबसाइट है या उनका जो सोशल मीडिया का चैनल है उसमें आप इसको इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6 से 7 बजे के बीच रेड कार्पेट की हलचल शुरू हो सकती है। फिलहाल 12 तारीख आज ही है, तो शाम को अगर देखना चाहते हैं कैन्स का रेड कार्पेट इवेंट तो बिल्कुल लॉग इन कर लीजिए उनके वेबसाइट पे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हुए सुन लेते हैं हमारा अगला गाना।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: तो जिन दोस्तों ने अभी भी ट्यून इन किया उन्हें बता दें कि 107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तीन का तड़का आपकी दोस्त पापिया के साथ। अब आगे बढ़ते हैं भाई, बॉलीवुड की एक और खबर, एक और फिल्मी खबर हम तक पहुंच चुकी है, जो है बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में धमाकेदार परफॉर्मेंस देने जा रही हैं। इनके साथ ही नोरा पहली बार बॉलीवुड स्टार बन जाएंगी, पहली बॉलीवुड स्टार बन जाएंगी जिन्होंने फुटबॉल और क्रिकेट दोनों वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनीज में परफॉर्म किया है। ये ग्रैंड सेरेमनी 12 जून को कैनेडा के BMO फील्ड में आयोजित होने वाला है। इससे पहले नोरा फीफा वर्ल्ड कप 2022 की क्लोजिंग सेरेमनी में और ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप की 2026 में भी परफॉर्मेंस से सुर्खियां बटोर चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने साथ बांग्लादेशी अमेरिकन डीजे शॉनजॉय भी मंच साझा करेंगे, जिन्होंने चम्मक छल्लो का ऑफिशियल रिमिक्स बनाया था। इसके अलावा ग्लोबल आर्टिस्ट जैसे माइकल बबल, एलिनिस मोरसेट, एलिसा कारा और जेस रेज भी मेगा इवेंट का हिस्सा होने जा रहे हैं। वहीं अमेरिका में होने वाले ओपनिंग सेरेमनी में पॉप सेंसेशन कैट पेरी परफॉर्म करेंगी। इसके साथ ही लीजा, टाइला, एनिटा, रेमा भी स्टेज पर आएंगे और अब बात उस नाम की जिसने फीफा का जादू अधूरा लगता है। जी हाँ, शकीरा ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपना

0: नया एंथम दाई दाई अनाउंस कर दिया है, जिसमें नाइजेरियन स्टार बर्ना बॉय भी शामिल है, याद है ना, वाका वाका। जी हाँ, अब फैंस को उम्मीद है कि शकीरा एक बार फिर वही वर्ल्ड कप मैजिक वापस से क्रिएट कर सकती हैं। तो इंतजार रहेगा उसी मैजिक का वापस से। फिलहाल के लिए हम बढ़ेंगे आगे और सुनेंगे हमारा अगला गाना।
1: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat.

तो दोस्तों स्टूडियो की घड़ी समय बता रही है 3:37 और हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले सीधे अगले एकदम इसकी ओर तड़के की ओर। तो चलिए बात करते हैं, आपको लगता है अगर कि भारत में जॉम्बी फिल्मों की शुरुआत गो गोवा गॉन से हुई थी तो कहानी थोड़ी सी अलग है। असल में भारत में पहली जॉम्बी फिल्म साल 1972 में रिलीज हुई थी। जी हाँ, दो गज जमीन के नीचे रामसे ब्रदर्स की फिल्म को सिर्फ 40 दिनों में तैयार किया गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस बजट में महज 3.5 लाख रुपए था। कम बजट के बावजूद फिल्म ने उस दौर में लोगों को डराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिल्म को ज्यादा रियल बनाने के लिए इसकी शूटिंग असली कब्रिस्तान में की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खुदाई वाले सीन के दौरान वहां सचमुच एक लाश निकल गई थी जिसे देखकर पूरी यूनिट सन्न रह गई। यही किस्सा बाद में इस फिल्म को सबसे चर्चित बातों में शामिल हो गया। शुरुआत में फिल्म को बी ग्रेड हॉरर कहकर नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी अलग फैन फॉलोइंग बन गई। इसके बाद रामसे ब्रदर्स ने भारतीय हॉरर सिनेमा को एक नई पहचान दी और पुराना मंदिर वीराना और बंद दरवाजा जैसी कई सारी यादगार डरावनी फिल्में बनाई हैं। फिलहाल के लिए ये था एक एक्स्ट्रा तड़का हमारी तरफ से और बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं हमारा अगला गाना।

0: समझ रहे हो कि जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: दोस्तों बता दूं आपको कि सिस्टम का दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है और पहली झलक ने ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म में सत्ता न्याय और सिस्टम के खेल को बेहद तीखे अंदाज में दिखाया गया है। फिल्म का निर्देशन अश्विनी अय्यर तिवारी ने किया जबकि निर्माण बवेजा स्टूडियोज के बैनर तले पम्मी बवेजा, हरमन बवेजा और स्मिता बालेंगा ने किया। ट्रेलर में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष ग्वारिकर बेहद दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। इनके साथ प्रीति अग्रवाल, आदिनाथ कोठारे, आश्रिया मिश्रा, गौरव पांडे और सायनदीप सेन गुप्ता भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दिए देंगे। फिल्म की कहानी ऐसे सिस्टम के इर्द गिर्द घूमती है जहां ताकत और प्रभाव सच को मोड़ने की कोशिश करते हैं। ट्रेलर में कोर्टरूम की तीखी बहस, इमोशनल टकराव और बदले की आग साफ महसूस होती है। हरमन बवेजा, अरुण सुकुमार, अश्विनी अय्यर तिवारी, तस्नीम लोखनवाला और अक्षत घिल्डियाल ने मिलकर फिल्म की कहानी लिखी है। सिस्टम 22 मई को रिलीज होने और हिंदी समेत दुनिया भर में 240 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीम करेगा ये बताया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इंतज़ार करते हैं सिस्टम का। जो श्रोतागण से कोर्टरूम ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा चॉइस होगा। अगर आप देखना चाहें तो देखते हैं आगे कैसा रहता है, ये बना कैसा है, इसके बारे में भी इसके रिलीज़ के बाद बातें होंगी, रिव्यू भी कर लेंगे। पर उससे पहले अभी फ़िलहाल के लिए सुन लेंगे हमारा अगला गाना।

दोस्तों मत का किंग के दूसरे सीजन का ऐलान हो चुका है। पहले सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद मेकर्स अब दर्शकों को एक बार फिर 1960 के दशक के बॉम्बे की अंडरवर्ल्ड और मटका जुए की दुनिया में ले जाने वाले हैं। विजय वर्मा स्टारर इस क्राइम थ्रिलर ने रिलीज के बाद काफी चर्चा बटोरी। इसकी कहानी, पीरियड सेटअप और दमदार परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब पसंद किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पिछले दो सालों में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नई इंडियन स्क्रिप्टेड सीरीज में शामिल रही है। सीरीज में मटका जुए के कारोबार, सत्ता, लालच और महत्वाकांक्षा की दुनिया को बेहद रॉ और इंटेंस अंदाज में दिखाया गया है। पहले सीजन में कुल 8 एपिसोड है जिन्हें कई देशों में शानदार रिस्पॉन्स मिला है। कृतिका कामरा, साई तमहांकर, सिद्धार्थ जाधव, गुलशन ग्रोवर और भूपेंद्र जड़ावत जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस सीरीज को अभय कुराने ने लिखा है जबकि नागराज मंजूले इसके क्रिएटर, राइटर और डायरेक्टर हैं। फिलहाल दूसरे सीजन की रिलीज डेट सामने नहीं आई है लेकिन इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि नए सीजन में मटका कारोबार की दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक राजनीति और हिंसक रूप में दिखाई जाएगी। फिलहाल क्या होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गाना।

तो दोस्तों पेडी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। रामचरण और जानवी कपूर स्टारर इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का ट्रेलर 18 मई को रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने एक नया पोस्टर शेयर करते हुए इसकी आधिकारिक घोषणा भी की है। नए पोस्टर में रामचरण बेहद रफ एंड रगेड लुक में नजर आ रहे हैं। लंबे बाल, भारी दाढ़ी, सिर पर लाल कपड़ा और कंधे पर बैग लिए रेलवे ट्रैक पार करते हुए उनका अंदाज काफी दमदार दिखाई दे रहा है। पोस्टर पर लिखा गया है, हिज स्टोरी विल बी स्पेशल। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि पेडी 4 4 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि प्रीमियर शो 3 जून को रखे जाएंगे। फिल्म का निर्देशन बूची बाबू सना और वही संगीत एआर रहमान ने दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेलर लॉन्च इवेंट में एआर रहमान लाइव परफॉर्म भी कर सकते हैं। फिल्म में शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, देवेंदु शर्मा और बोमन ईरानी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। साथ ही खबर है कि श्रुति हसन का फिल्म में एक स्पेशल सॉन्ग भी होगा। पेडी को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। तो ये था पेडी का हमारा अपडेट फिलहाल। और आज फिलहाल हमारा जो प्रोग्राम है, हम यही समाप्त करते हैं हमारे बॉलीवुड और हॉलीवुड के तड़के, तीन का तड़का जो कार्यक्रम है स्पेशल, जहाँ पे होती है ढेर सारी फिल्मी बातें, उसको आज यही समाप्त करते हुए बैक टू बैक शायद दो गाने हम सुन ले। मैं पापिया मिलती हूँ थोड़ी ही देर में वापस FM गोल्ड, और उसके बाद सीधे वापस FM रेनबो पर 5:20 FM गोल्ड और 7 FM रेनबो पर लेकर शायन क्लासिक्स और छाया लोक में आज होंगी कुछ प्यार भरी बातें, लेंगे आपके फ़ोन कॉल्स भी दोनों प्रोग्राम्स में, साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी रखे जाएंगे होपफुली। तो फिलहाल के लिए मैं पापिया लेती हूँ आप सभी से विदा, और तब तक के लिए मिलूंगी किसी और दिन तीन का तड़का के प्रोग्राम में वापस कुछ और नए खबरों के साथ। साथ ही साथ रहेंगे धमाकेदार गाने भी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ही 107 FM रेनबो है ये। थोड़ी ही देर में सुनेंगे यहाँ पे अगला प्रोग्राम, और मैं तो आपसे मिलूंगी 5:20 पर चाइन क्लासिक्स में, जहाँ होंगी हल्की फुल्की और पुरानी गीतों का सफर, साथ ही साथ प्यारी प्यारी बातें भी।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ मोनो सेवन एफएम रेनबो पर एक बार फिर से लेकर आपके आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक मोनो सेवन एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक।
0: जी हाँ, छायालोक के प्रोग्राम का नाम। और आज है ट्यूसडे, यानी कि प्यार भरा दिन। और सुनेंगे
2: प्यार भरे नगमे।
0: दिन के आखिर में बातें करेंगे, प्यार भरी बातें और ढेर सारे प्यार भरे नगमे सुनेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, शाम का अपना एक अलग स्वभाव होता है। दिन भर की भागती दौड़ती दुनिया जब धीरे धीरे शांत होने लगती है, तब कहीं जाकर इंसान अपने भीतर की आवाज़ सुन पाता है। सूरज ढलने लगता है, आसमान के रंग बदलने लगते हैं और हवा में जैसे एक हल्की सी उदासी घुल जाती है। ये वही समय होता है जब यादें सबसे ज़्यादा लौटती हैं। किसी का चेहरा, किसी की आवाज़, किसी की हंसी, किसी की नाराज़गी, सब कुछ अचानक बहुत बहुत करीब महसूस होने लगती है।

0: चलिए अपने प्यार को याद करते हुए फ़ोन कॉल्स आने लगे हैं वैसे। और मेरा जो सवाल था कि आप दो विषयों पर बात कर ही सकते हैं, जैसा कि अपने पहले प्यार के बारे में, ऐसा क्या पहला जो प्यार होता है वो आप भूल सकते हैं कभी, या फिर बताइए कि ऐसा ही कोई प्यारा सा इंसान जिसने आपके लिए छोटा सा ऐसा कुछ काम किया हो जो पूरे ज़िंदगी की याददाश्त बन गई आपके लिए, आप उस जेस्चर को, उस जो हेल्प है उसको आप भूल ही नहीं पाते। फिलहाल हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे पहले लिसनर, जो देखते हैं चलिए कौन है।
1: हेलो
2: हेलो
0: हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छायालोक में।
2: नमस्कार दीदी भाई, शुभ संध्या। हमें चुचुड़ती का अवसर पर बोल
0: जी। अशोक दा, कैसे हैं, सब ठीक है घर परिवार में?
2: सब ठीक है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बताइए।
2: बांग्ला बोल रहे, असुविधा
0: नहीं? कोई असुविधा नहीं, कोई असुविधा नहीं, आप बोलिए जिसमें भी आपको।
2: একটা আমি যখন বাস লাইনে কাজ করি তখন একটা প্রেম করে বিয়ে করেছি, এখন আমার আছে ঘরে।
0: আচ্ছা,
2: আজকে বিশ করেছি, 42 বছর হয়ে গেল।
0: ওহো,
2: ওই আমার সব, আমি এখন ঘরে বসে ওই সব আমার।
0: জি জি,
2: ওকে, নেই আমার সব কিছু।
0: ওকে ওকে ওকে,
2: ঠিক আছে
0: ঠিক আছে। তো কোন সে काजल फिल्म से आप सुनना चाहते थे गाना, तो मैं बजा दूं आपके लिए? किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं आप अपने? ओके ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर,
2: ठीक है,
0: नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ अशोक जी, और चलिए काजल फिल्म से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था गाना सुनाने का, तो सुन लेते हैं वो गाना। फिलहाल

दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि दिन चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न बीते, शाम होते होते दिल किसी अपने के बारे में ज़रूर सोचने लगता है। शायद इसलिए क्योंकि शाम सिर्फ दिन का अंत नहीं होती, वह एहसासों का समय होता है। ये वो पल होता है जब बाहर की दुनिया थोड़ी धीमी हो जाती है और भीतर की दुनिया थोड़ी ज़्यादा जाग जाती है। मोहब्बत का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। वो हमेशा शोर नहीं करती, वो हमेशा बड़े बड़े शब्दों में नहीं बोली जाती। कई बार वो बस एक छोटी सी चिंता में छुपी होती है, किसी के इंतजार में, किसी की आदत में। और आज की ये महफिल उन्हीं छोटे छोटे एहसासों के नाम है। जी हाँ।

नहीं कि ऐसा कोई प्यार वाला इंसान जिन्होंने आपके लिए हल छोटा सा कुछ काम किया हो जिसे आप भुलाएं नहीं भूल सकते। अपने पहले प्यार के बारे में बात कर सकते हैं। आज है प्यार वाली शाम, इश्क वाली शाम, प्यार भरे नगमे के नाम। एक ऐसी शाम जहां बात हो रही है दिल की, यादों की, मोहब्बत की और उन अनकहे जज्बातों की जिन्हें हम अक्सर दुनिया से छुपा कर रखते हैं। आज कोई एक कहानी नहीं होगी बल्कि उस दिल की बात होगी जिसने कभी किसी को सच्चे मन से चाहा हो, चाहे वो प्यार पूरा हुआ हो या अधूरा रह गया हो, क्योंकि सच्ची मोहब्बत का असर कभी पूरा खत्म नहीं होता। तो आइए चलिए इस खूबसूरत शाम में ऐसे ही कुछ पल को हम बनाते हैं और आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार भी करते हैं और आपकी बातें सुनना चाहते हैं।

0: तो यूं ही दोस्तों विषय हमारे जो जिस बात विषय पे हम बात करना चाह रहे थे, प्यार भरे नगमे हैं आज प्रोग्राम का नाम, तो फिर रोमांटिक शाम तो होनी ही है। तो मैं बस जानना चाहती हूँ आप सभी से कि ऐसा कौन सा रोमांटिक या फिर हेल्पफुल जेस्चर, कोई हेल्प था जिसे आपको जिसे मिला आपको आपके प्यार भरे प्यारे इंसान से, मतलब आपका जो पहला प्यार था उसने आपको आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा काम किया जिसे आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाए हो। फिलहाल हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है। हेलो,
1: गुड इवनिंग पपिया जी।
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में।
1: मैं मुनीरुद्दीन लस्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण शंकराई लाहौर।
0: जी मुनीरुद्दीन, कैसे हैं, सब ठीक है घर परिवार में?
1: आपके द्वारा से बहुत अच्छा है और आपका प्रोग्राम सुनकर और भी अच्छा हो गया।
0: थैंक यू सो मच।
1: सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ रिश्ते ऊपर वाला बनाते हैं, कुछ रिश्ते ऊपर वाला बनाते हैं और कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, पर वो लोग बहुत खास होते हैं जो बिना रिश्तों के कोई रिश्ता निभाते हैं। तो रफिया जी
0: जी,
1: हमेशा हमारे सभी श्रोता को आप सीने का पास है, ये तो हमारे लिए आप खास है।
0: थैंक यू।
1: और जो टॉपिक लाया वो रेडियो के जरिए एक रिश्ता हुआ था और वो रिश्ता मन में है
0: जी,
1: वास्तव में नहीं है। तो आज भी वो है रेडियो में, हम भी है लेकिन अलग अलग है।
0: ओके।
1: लेकिन वो एहसास नहीं, वो हमारे लिए खास होते हैं।
0: तो आपके लिए क्या, आपको क्या लगता है कि प्यार होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर साथ होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
1: नहीं, साथ होना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
0: अच्छा।
1: हमारे मन के लिए जो है वो सारा जीवन रह जाते हैं। पास के तो होते हैं वो खास होते हैं, ये मैं नहीं विश्वास करता हूँ। जो दूर रहते हैं वो भी खास होते हैं, क्योंकि वो और भी और करीब होते हैं जो दूर में रहते हैं।
0: अच्छा, ओके ओके।
1: और जैसा कि आप हमारे लिए खास है
0: जी,
1: हमने नहीं देखा है नहीं पहचाना है
0: जी,
1: लेकिन हमारे लिए कितना खास है मैं बातों में बता नहीं पाया है।
0: जी शुक्रिया।
1: और आपको पता है तो बरसात की रात फिल्म से 98 का फिल्म, मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की सुरेले आजमी और कविता कितना मोतिया, मैं इन्हें दिल का हुक्म सुन लिया
0: जी,
1: समीर का लिखा हुआ गीत, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत
0: जी,
1: बहुत अच्छा फिल्म है, ये बताना प्लीज सुना दीजिए।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। तो ये थे मुनीरुद्दीन दा और बातें की ढेर सारी, बहुत प्यारी प्यारी बातें की और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें भी बताई। मेरे ख्याल से जो भी आप सुन रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ये एहसास हो गया होगा कि प्यार क्या चीज़ है। भाई फिलहाल कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में सुन लेते हैं बरसात की रात का ये गाना।

0: फिलहाल काफी देर से हमारे अगले कॉलर भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्ते।
0: नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में।
1: आपको स्वागत है, आप इतना अच्छे से गाना बजा हमको सुन के खुश होते एकदम।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बताए।
1: मेरा नाम नन्हे, हम बाटा नगर से बोल रहा हूँ।
0: जी नन्हे जी, कैसे हैं नन्हे भाई, बताइए घर परिवार में सब कैसे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है ना?
1: बढ़िया चल रहा है।
0: कोई दंगा फसाद तो नहीं?
1: दंगा फसाद बात बोलना नहीं चाहिए।
0: चलिए बताइए क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में, सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, वही जानना था।
1: जिंदगी में सब ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा सा कोई नाराज होता है कोई खुश होता है।
0: तो अपने अपने पहले प्यार व्यार के बारे में बताइए, कुछ तो बताइए। प्यार भरे नगमे प्रोग्राम है भाई, तो फिर जानना तो बनता है।
1: प्यार का बात बोले जी, हकीकत बात है। एक लड़की को मोहब्बत कितना कोई दिन बोलने नहीं सके थे।
0: अच्छा, क्या नाम था? शबाना। तो शबाना अगर आप सुन रही है तो फिर आप जान लीजिए कि भाई आपसे भी कोई पहली मोहब्बत कर चुके हैं।
1: इतना उसके ना आगे पीछे घूमते थे, इतना वो भी जानती थी। उसके तो दो लड़की थी ना, दोस्त थी उसका। बोली की तुम बोल रहे थे अभी तैयार था एकदम।
0: अच्छा,
1: अंदर मेरे घर का डर है हमसे।
0: अच्छा,
1: घर का डर से नहीं बोले थे, नहीं तो हम बोल देते।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होते रहता है, ऐसी बातें होती रहती हैं और आती जाती रहती हैं जिंदगी में। पर फिलहाल तो आप
1: लेकिन हम अपना भाई के खाली को एकदम बेहिचक से बोल दिए थे मोहब्बत के बाद।
0: बहुत अच्छा किया
1: था। भी नहीं, कोई डर भी नहीं था।
0: तो आपके हिसाब से क्या जरूरी होता है? मैंने पूछा था इससे पहले भी कि आपके हिसाब से जरूरी क्या होता है, प्यार इश्क होना, प्यार होना या फिर साथ रहना?
1: देखिए प्यार से पहले प्यार होगा, उसके बाद तो साथ रहना, जिंदगी भर के एकदम ईमानदारी से रहना चाहिए।
0: अच्छा,
1: यही बात है। लेकिन कोई भी किसी से मोहब्बत करे, कुछ भी करे, लेकिन ना किसी का साथ ना छोड़े।
0: जी
1: मेरा बोलना मतलब।
0: ओके, बहुत अच्छी बात बोली आपने, थैंक यू। बहुत अच्छा बोला आपने, धन्यवाद।
1: बेमतलब का साथ करना तो गलत बात होता है दीदी। इंसान है ना, बेमतलब दिमाग में घुसा लेते हैं ना, उल्टा उल्टा बदनाम देता है।
0: एकदम एकदम। तो फिलहाल बताइए रन्ने जी, आप गाना कौन सा सुनना चाहते हैं, किसको डेडिकेट करना चाहते हैं गाना?
1: मिस्टर आशिक फिल्म का गाना तेरी चाहत का दीवाना हुआ।
0: तो किसको सुनाना चाहते हैं ये गाना बताइए, कोई स्पेशल?
1: जितना छोटा फिल्म सबको।
0: ओके ठीक है, चलिए ओके ठीक है ठीक है, चलिए चलिए सुनते हैं, हम सब मिलकर सुनते हैं ये गाना। ओके बाय बाय। तो ये थे नन्हे जी बाटा नगर से, और सुनना चाहते हैं तेरी चाहत के दीवाने हुए हम मलका यानी और किशोर कुमार की आवाज में। तो चलिए सुन लेते हैं।

0: जबरदस्त गाने और प्यारी प्यारी बातें और क्या चाहिए इस शाम, है ना। फिलहाल चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: गुड इवनिंग दीदी।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में।
1: थैंक यू दीदी। और मैं शेख आजादुल बात कर रहा हूँ, माश्तरा बाटानगर से।
0: जी आजादुल जी, कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक ठाक?
1: हाँ दीदी, सब बढ़िया है। आप तो ठीक है? आप तो बहुत बढ़िया, मस्त है एकदम
0: एकदम एकदम। आप लोगों से बात होता है तो और ज्यादा मस्त हो जाती हूँ।
1: हाँ दीदी एकदम सही बात, आपका प्रोग्राम सुनकर भी मैं बहुत बढ़िया हो जाता हूँ। आपका जो वॉइस है ना वो बहुत क्यूट है।
0: थैंक यू सो मच। बताइए तो प्यार के बारे में क्या आपकी राय है, आपके लिए क्या जरूरी है, प्यार होना जरूरी है या फिर प्यार का साथ रहना जरूरी है?
1: नहीं दीदी, प्यार के साथ हमेशा रहना जरूरी है।
0: अच्छा,

0: और मेरा तो ऐसा कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं था।
1: हाँ देखिए, ये जो पहले आपने डिफेंस कर दिया ना, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है।
0: ऐसा कोई बात नहीं दीदी, होता था जरूर बताता आपको, आपके आपके साथ क्या छुपाना।
1: अच्छा ओके थैंक यू, चलिए हाँ ठीक है, हाँ बताइए।
0: और दीदी मैं आज एक तो गाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है हम तो मोहब्बत करेगा।
1: अच्छा,
0: और गाने क्या बोले है, तेरे आगे पीछे कई दिल खो गया, आए मेरा दिल तेरा दिल हो गया, ये वाला गाना सुना दीजिएगा तो बहुत बढ़िया।
1: एकदम सुनाएंगे आपको, एकदम सुनाएंगे, है हमारे पास
0: कुछ कुछ फ्रेंड को रिक्वेस्ट करे।
1: हाँ बताइए, किसको डेडिकेट करना चाहते हैं?
0: अभी तो आपको, खास करके आपको
1: जी,
0: और जो FM रेनबो के साथ है सभी दोस्त को सुनाना चाहता हूँ।
1: ओके ठीक है, ठीक है
0: दीदी, ठीक है, अच्छा रहे, खुश रहे, मस्त रहे,
1: एकदम एकदम वापस मुलाकात होगी। चलिए
0: ओके दीदी, ठीक है,
1: बाय बाय
0: बाय।
1: फिलहाल चलिए रिक्वेस्ट के बाद गाना हम सुन लेते हैं, कुमार शानू का, यानी कि वो साथियों की आवाज़ में।

0: देखते देखते अब बस 10 मिनट ऑलमोस्ट रह चुके हैं इस पहले घंटे के और हमारे फोन कॉल पर भी इंतजार चल रहा है. चलिए देखते हैं कौन है. हेलो
1: जी, गुड इवनिंग.
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में.
1: जी धन्यवाद, मैं पारस पंडित चुचरा हुगली से बोल रहा हूँ.
0: जी पारस जी, कैसे हैं?
1: एकदम दीदी मस्त है, स्वस्थ है. मौसम भी एकदम मस्त स्वस्थ हो गया, गर्मी का अनुभव ही नहीं हो रहा है.
0: अच्छा वाह, मतलब प्यार भरे नगमे चल रहा है तो प्यार भरा मौसम भी हो गया.
1: जी जी बिल्कुल, अभी दीदी चाउमीन लाए हैं, चाउमीन बनाएंगे और खाएंगे सभी परिवार मिलकर.
0: बहुत अच्छी बात है, यही तो मजेदार है भाई, एक साथ मिलकर बनाएं और खाएं, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है.
1: जी जी दीदी, वो हम लोग घर में ही बना लेते दीदी, स्ट्रीट वाले नहीं लाते हैं.
0: जी बेटर है, वही बेटर है ज्यादा.
1: पर लाकर बनाकर बच्चे लोग मिलकर खाते हैं,
0: अपने हिसाब से बनाएं और अपने हिसाब से टेस्टी चीज है.
1: हाँ हाँ, शुद्धता पूरी तरह से मिलती है, शुद्धता और साफ सफाई.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल. तो बताइए पारस जी कि आपके लिए क्या, आपने मतलब पहला प्यार था आपकी जिंदगी में?
1: जी दीदी, जिंदगी में तो प्यार रहता ही है लेकिन कामयाब नहीं होता है.
0: जी, और बात यह है कि अभी फिलहाल आपके प्यार से
1: है, रहीम जी का एक दोहा सुनाते हैं.
0: जी बोलिए.
1: पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भाया न कोय, भाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय.
0: जी,
1: प्यार में इतनी गहराई है कि ढाई अक्षर से ही उसमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता.

0: जी एकदम सही बात है। तो आपके लिए बैलेंस भी क्या इम्पोर्टेंट है, प्यार होना या फिर साथ होना?
1: जी दीदी, प्यार होना भी जरूरी है और साथ रहना भी जरूरी।
0: अच्छा,
1: अगर हम एक दूसरे से प्यार करेंगे तभी हम साथ भी रहेंगे।
0: नहीं, बहुत
1: प्यार अगर नहीं करेंगे तो दीदी साथ भी नहीं रहेंगे।
0: नहीं, बहुत वक्त होता है ना कि रहते रहते एक टाइम ऐसा आता है कि हम शायद वो एहसास करना भूल जाते हैं कि प्यार
1: है। हाँ, वो होता है, वो एक मतलब मन का भटकाव हो जाता है। तो ऐसा करने से ही कला पैदा हो जाती है।
0: तो
1: प्यार किसी एक से कीजिए और सारे जिंदगी भर उसके साथ निभाइए। अपने बच्चों से, अपने बीवी से, अपने परिवार से और दोस्तों से भी प्यार कीजिए ताकि दोस्तों में भी कोई मतलब कलह ना हो।
0: जी जी, बहुत बहुत सही बात, बहुत सही बात। तो ठीक है, चलिए बताइए आप कौन सा गाना सुनना
1: चाहते हैं।
0: हेलो,
1: प्यार ही सबसे बड़ा चीज है।
0: एकदम एकदम,
1: प्यार रहने से भी साथ रहेगा जरूर।
0: सही बात बोला आपने, बिल्कुल सही बात बोला। तो बताइए पारस जी, अभी फिलहाल क्या है कि
1: बच्चों से धीरे से बच्चों से प्यार कीजिएगा तो बच्चे भी आपको प्यार करेंगे।
0: सही बात।
1: बच्चों को यदि काटिएगा तो बच्चे भी एक दिन आपसे रह जाएंगे।
0: चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें की हमने आपसे, हम दोनों ने बातें की। और फिलहाल क्या करते हैं कि एक घंटा खत्म होने वाला है तो फटाफट बता दीजिए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। उसके बाद
1: मासूम पिक्चर का ये जो तेरी पायल की
0: है। ओके, ठीक है, चलिए ये गाना सुनते हैं और उसके बाद फिर सीधे चले जाएंगे 2 मिनट के लिए न्यूज ब्रेक की ओर। ओके
1: जी, गुड नाइट।
0: गुड नाइट पारस जी, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं। आपको भी स्वीट ड्रीम्स।
1: ओके ओके।
0: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये जो तेरी पायलों की छन छन है।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक। प्यार भरे नगमे,
1: वन ओ सेवन एफ एम रेनबो में प्यार भरे नगमे, छायालोक के अंतर्गत प्यार भरे नगमे में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पापिया हूँ आप सभी के लिए। बातें हो रही हैं इश्क मोहब्बत की, और बात कर रही थी, सवाल था मेरा कि आप

ये क्या इम्पोर्टेंट है, प्यार होना या फिर साथ होना। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इश्क जो है वो हमेशा शोर नहीं करता। बहुत लोग सोचते हैं कि प्यार हमेशा जोर से बोला जाता है, फिल्मों की तरह बारिश में, ऊंची आवाजों में, बड़े बड़े इजहारों में। लेकिन सच कहूं, सबसे गहरा इश्क अक्सर बहुत खामोश होता है। वो किसी के घर पहुँच कर मैसेज कर देना में छुपा होता है, किसी के तुमने खाना खाया में होता है, किसी के बिना बोले समझ जाने में होता है। और शायद इसीलिए पुराने जमाने की मोहब्बत आज भी लोगों को याद आती है। वो दौर जब लोग घंटों छत पर खड़े रहते थे सिर्फ एक झलक के लिए, जब चिट्ठियों में इत्र की खुशबू भेजी जाती, जब नाम लेने पर से चेहरा लाल हो जाता था। आज सब कुछ तेज हो गया है, लेकिन दिल आज भी वहीं अटका है, किसी पुराने गीत, किसी पुराने मौसम, किसी पुराने इंसान के पास। कभी कभी लगता है ना कि इश्क दरअसल वक्त को रोक लेने की कोशिश है। हम चाहते हैं कि कोई एक पल बस वहीं ठहर जाए, वो शाम, वो मुस्कान, वो साथ और वो एहसास की दुनिया चाहे जैसी हो, कोई है जो हमें महसूस करता है। इसी एहसास के साथ सोचिए उन गीतों के बारे में जिन्हें सुनकर आपको किसी की याद आ जाती है।

दोस्तों, शाम और मोहब्बत का जो रिश्ता है ना, वो बहुत पुराना है। शायद उतना ही पुराना जितना इंसान का इंतजार। दिन के उजाले में इंसान दुनिया के कामों में उलझा रहता है। जिम्मेदारियां, भाग दौड़, लोगों की आवाजें, सब मिलकर दिल को व्यस्त बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम उतरती है, वैसे वैसे मन खाली होने लगता है, और खाली मन में सबसे पहले यादें ही लौटती है। कभी खिड़की के पास बाहर डूबते सूरज को देखना, कभी छत पर टहलते हुए अचानक किसी की याद आ जाना, कभी बिना वजह किसी पुराने नंबर तक उंगलियों का पहुंच जाना। शाम इंसान को यही सब तो करवाती है।

दोस्तों, पुराने समय की शामें और भी अलग होती थी। लोग जल्दी घर लौट आते, रेडियो की धीमी आवाज चलती थी, कहीं दूर से किसी गाने की धुन आती और उन्हीं धुनों के बीच लोग अपने दिल की बातें महसूस किया करते। मोहब्बत में पड़े लोग शाम का इंतजार करते थे, क्योंकि यही वो समय होता था जब किसी की झलक मिल जाती, कोई छत पर आएगा, कोई खिड़की खोलेगा, कोई रास्ते से गुजरेगा। आज जमाना बदल गया है, शहर तेज हो गए हैं, लोगों के पास वक्त कम होता है, लेकिन दिल आज भी शाम में वैसा ही होता है। आज भी कोई ऑफिस से लौटते हुए किसी को याद करता है, कोई मेट्रो में बैठे बैठे पुरानी तस्वीरें देखता है, कोई रात होने से पहले बस एक बार किसी की आवाज सुन लेना चाहता है। और यही तो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात है। समय भले ही बदलता रहता हो, लेकिन

एहसास नहीं बदलते। शाम दरअसल इंसान को उसके सबसे सच्चे रूप में ले आती है। दिन भर जो भी हमें दुनिया से छुपाते हैं, शाम उन्हें धीरे से हमें हमारे सामने रख देती है। शायद इसलिए कुछ लोग शाम से प्यार करते हैं और कुछ लोग शाम से डरते हैं, क्योंकि शाम दिल को बहुत ईमानदार बना देती है।

दोस्तों, सुबह उम्मीद देती है, दोपहर व्यस्त कर देती है, लेकिन शाम शाम दिल को अकेला छोड़ देती है। और तभी शुरू होती है यादें। कभी खिड़की के पास बैठकर बाहर देखना, कभी छत पर टहलना, कभी बिना वजह फोन उठाकर किसी का नंबर देख लेना, ये सब शाम ही तो करवाती है। कितनी अजीब बात है ना, दिन भर हम दुनिया से लड़ते हैं, लेकिन शाम होते ही दिल किसी एक इंसान के सामने हार मान लेता है। पुराने फिल्मों में भी आपने देखा होगा, सबसे खूबसूरत प्रेम दृश्य अक्सर शाम में ही होते हैं। हल्की हवा, धीमा संगीत और दो लोग जिन्हें शायद पूरी दुनिया से ज्यादा एक दूसरे की खामोशी पसंद हो। आज भले ही गाने सिस्टम से रैंडमली चले, लेकिन दिल का प्लेलिस्ट हमेशा वही रहता है। कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो सीधे यादों तक पहुंचती है, और फिर इंसान चाहे ऑफिस में हो, ट्रेन में हो, या फिर किसी भीड़ में, दिल अचानक कहीं और पहुंच जाता है। शायद किसी पुराने स्टेशन पर, किसी कॉलेज की सीढ़ियों पर, या किसी इस ऐसी शाम में जहां किसी ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था। क्यों है ना। फिलहाल सवाल मेरा आपसे वही कायम है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, प्यार का जिंदगी में होना या फिर साथ होना।

0: और म्यूजिक मतलब सुनने के लिए प्यार होना तो बहुत जरूरी है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्यार का मतलब वही मतलब प्यार का साथ मतलब होना जरूरी है।
1: तो आपका प्यार आपके साथ है
0: जी, मतलब बिल्कुल, जैसे कि होता है ना, जैसे कि घर परिवार का मतलब है ना, मम्मी पापा भाई बहन
1: अच्छा।
0: और बाकी ऐसा और संगीत से बस।
1: अच्छा
0: जी बिल्कुल, संगीत संगीत से बहुत ज्यादा।
1: ठीक है ठीक है ठीक है।
0: और एक फरमाइश में रखना चाहूंगा,
1: हाँ बोलिए,
0: क्योंकि संगीत से जिसको प्यार रहता है तो संगीत का एक फरमाइश कर ही सकता है।
1: हाँ बिल्कुल एकदम।
0: फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया और गाने को बोले हैं हम करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से।
1: ओके ठीक है ठीक है ठीक है। सर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, किसी स्पेशल इंसान को?
0: जी बिल्कुल, मैं अपने घर परिवार में सुन रहे हैं सभी को और जितने सुनने वाले श्रोता जो है, बहुत दिनों बाद आज मैं उन्हें बात ही कर रहा हूँ, तो सभी को मैं सुनाना चाहता हूँ
1: जी।
0: और आप इसके लिए आपको भी मैं सुनाना चाहूंगा, क्योंकि आप रेडियो सब मेरे स्टूडियो में बैठ के जो काम करती है प्ले करती है बहुत ही अच्छा लगता है।
1: थैंक यू सो मच,
0: कार्यक्रम करती
1: है। थैंक यू थैंक यू। फिर मिलते हैं जी, तो ओके बाय।
0: ओके जी थैंक यू।
1: तो ये थी जीतू पासवान हमारे साथ और फरमाइश की इन्होंने मिस्टर इंडिया से, करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से। तो चलिए जी हाँ, मिस्टर इंडिया फिल्म में मिस्टर इंडिया से हम सभी प्यार करते हैं। फिलहाल ये है हमारे तरफ से प्यार का इजहार।

0: So in this case,
1: ma'am, please excuse me. किसने छेड़ा मेरी बहन को?
2: क्या झंड लाइफ है यार, स्कूल के बच्चे बोलेंगे अब हमें.
3: मैम, ये बच्चा क्लास इंटरप्ट कर रहा है, कुछ बोलो ना इसको.
4: ओए मोगली, चल दफा हो जाए. तो
1: मैं फिर से पूछ रहा हूँ, किसने छेड़ा मेरी बहन को?
2: ए, चल निकल.
1: तू यहीं रुक दीदी, मैं आता हूँ.
5: राइंग का सीजन तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है मैडम, अभी तो जलवा बाकी है.

0: सर मैं बताता हूँ, टोटल चार लोग थे, लंच के बाद चले गए, लोकेश, संजीव, करण, डिम्पी।
1: सर कल आप प्लीज फिर आएंगे, वो लोग आपको यहीं मिलेंगे।
2: लाइट कैमरा डायलॉग, लाइट कैमरा डायलॉग।

याद नहीं कहां सुना था, पर सुना था कहीं, राधा कृष्ण एक कैसे होते जब दो थे ही नहीं।